0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़सामेन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टोरो के स्टूडियो से और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। सामेन और नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम कुछ यूँ हैं कि अभी मैं बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके हाज़िर हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में PTI के सबका सदर जनाब आतिफ इलियास तशरीफ़ रखते हैं। उनसे धरने के हवाले से जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से और डेनमार्क में उसके हवाले से बात करेंगे। समय नाजरीन, हसब मामूल 12 से 1 बाशी के संग और 1 से 2 बजे बाबे फूके दियाँ फूकाँ जो है वो प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। आज भी आपके लिए दिलचस्प और हंसा मजाक लतीफ़े जो हैं वो लेके हाजिर होंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बिस्मिल्लाह करम प्रोग्राम, जिसका मेज़बान मैं रज़ा मुस्तफ़ा और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आतिफ इलियास साहब। उनका शुक्रिया कि उन्होंने एक तो शॉर्ट नोटिस पे जो है वो दावत कबूल की और दूसरा यहाँ पे तशरीफ़ लाए। वक्त हमारे साथ इनके साथ थोड़ा सा मुख्तसर होगा क्योंकि इनकी थोड़ी सी मसरूफियात हैं तो जाएंगे ये, लेकिन चंद सवाल और जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले आतिफ भाई, माजरत के साथ ये माइक का आपके सामने पड़ा है, साथ में थोड़ा सा आवर वी लर्निंग तसल्ली लिख ले,
2: इधर लगा लें,
1: ये इधर लगा लें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम और खुश आमदीद आपको अपने प्रोग्राम में कहते हैं। आतिफ भाई, ये बताइएगा कि PTI की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब सामईन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रज़ा भाई आपका शुक्रिया, आपने दावत दी और अपने पॉइंट्स का इधर ज़ाहिर ख्याल करने का मौका दिया। जनाब, जो कुछ हो रहा है वो आप तो देख रहे हैं कि बहुत सरासर ज़्यादती और गलत हो रहा है, और ये 3 साल से जो भी बर्बरियत का और जुल्म का जो निज़ाम चला हुआ है इसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती। और जिस तरह एक नई इन्होंने करके माओ बहनों को भी घर से निकाला, हमारे सियासी वर्कर भी जो है इस वक्त पर जेल में बैठे हुए हैं, और जो आपकी अभी लेटेस्ट अगर आप पूछना चाह रहे हैं जो फ़िलहाल जो पाकिस्तान में है, मुल्क जो है हमारा काफ़ी पीछे चला गया है, और ये जो जुल्म और क्या नाम है जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है इसकी मिसाल पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती।
1: तो आतिफ भाई, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, आपके जो चेयरमैन है वहाँ पे और दूसरे जो अहदेदारान हैं, क्या आप यहाँ पे रहते हुए डेनमार्क में समझते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान में वो ठीक है, और जो तहरीक चला रहे हैं या PTI के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं?
2: सर, बात यह है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारी ओवरसीज़ लीडरशिप का मतलब है कि जैसे हम डेनमार्क में हैं, नॉर्वे में हैं, इंग्लैंड में, जो भी यूरोप में जो सियासी हमारी जो पार्टी के वर्कर्स हैं, हम अपनी पार्टी के चंद साथियों के साथ उधर कॉन्टेक्ट में हैं, रबते में हैं, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत स्लो और आस्ता स्लो प्रोसेस में जा रही हैं, और हमारे जो इधर क्या नाम है एतराज़ात होते हैं वो उनको अपना एतराज़ात रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन अभी जो अभी एक मूवमेंट जो चली हुई है तो हमारी क़यादत भरपूर अब खान साहब के हुक्म पे कोशिश कर रही है कि अब इसका कोई नतीजा निकले, और हमारा भी इधर से भरपूर एक किस्म का क्या कहते हैं कि प्रेशर है उधर, और उनको भी पता कि अब ये बात ज़्यादा तक चली नहीं कि जो इनकी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी के जो पाकिस्तान के जो हैं उनकी भी मिली जुली भुगत, और ये क्या नाम है इसी वजह से हम जो उन्होंने उनके साथ क्या नाम है डील्स की हुई हैं इसकी वजह से हमारा काफ़ी प्रोसेस हम पीछे गए हैं। अगर वाम और ये लीडरशिप सही काम करती तो ये 3 साल खान साहब अंदर जेल में ना होते।
1: तो अगर मैं आपको सही समझाऊँ तो आप समझते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कोई जो उनके साथ मिले हुए हैं और कुछ तो मजबूर है, क्योंकि ऐसी भी बातें होती हैं कि आप तो जी यूरोप में रहते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आपने कुछ कहना है तो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पर कहें, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूम है तो आप हाल में पाकिस्तान भी गए थे।
2: जी सर, अभी मैं पाकिस्तान हो गया हूँ, और ये इसमें कोई बात नहीं है कि कंप्रोमाइज्ड हैं और कोई मजबूर भी हैं। सर देखें, जिन्होंने पाकिस्तान में रहना, जो मुल्क से निकल गए हैं, काफ़ी हमारे जो पीटीआई के वर्कर हैं वो मुल्क से बाहर भी दर बदर धक्के खा रहे हैं, लेकिन जो हैं कुछ तो खड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा उनको ब्लेम ना करें। जब माओ बहनों पर बात आती है तो अच्छे अच्छे जो हैं वो दलेर भी गिर जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। खान साहब ने भी अपने कई दफ़ा कहा है कि आप उन लोगों को मजबूर ना करें जो पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते या वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनको ट्रोल ना करें। लेकिन जिसने पार्टी का झंडा उठा लिया है या उसने क़यादत ले ली है, तो फिर हमारा भी यही एक डिमांड है, हमारी एक ही डिमांड है कि फिर पार्टी का झंडा उठा के फिर आपको कुछ भी हो जाए फिर आगे बढ़ना चाहिए, अवाम को एंगेज करना चाहिए, पब्लिक को एंगेज करें। मसला यही हुआ है कि हमें जो पाकिस्तान की जब कंप्रोमाइज लीडरशिप हो जाती है तो फिर आप अवाम को एंगेज नहीं कर सकते।
1: अच्छा आतिफ भाई, ये भी होता है कि जब अगर मेरे पास वो सकत नहीं है बोलने की और आप बोल सकते हैं तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कुर्सी आपको दे दूँ। अगर मैं मजबूर हूँ, मैं कंप्रोमाइज्ड हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि वो बोझ मेरे कंधे नहीं बर्दाश्त करते, तो क्या मुझे वो अपनी कुर्सी, अपना माइक, अपनी जगह जो है किसी और को नहीं देनी चाहिए जो आके वो आवाज़ जो है वो उठा सके?
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। अगर आप में वो ताकत और वो हिम्मत नहीं रही, अगर आप खान साहब के लिए कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपको ये क्या नाम है स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए बैठे हैं तो फिर आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
1: अच्छा, यहाँ डेनमार्क में भी हमने देखा है कि पीटीआई के जो अहदेदारान रहे हैं, अभी तो मेरे ख्याल में आपकी कोई बॉडी यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो डेनमार्क के नहीं हुए, लेकिन जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो है वो कोई एहतजाज होता है तो वहाँ पे जितने भी पीटीआई के अपने लोग जो दूसरे जगह पे अपना नाम पीटीआई के साथ मुंसलिक करते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो अपने जो हैं वो कहीं और पे। क्या पीटीआई डेनमार्क में भी मुख्तलिफ धड़े हैं बने हुए?
2: सर पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा, हम जब भी कोई पार्टी से पीछे कॉल आती है तो हम हमेशा हमारा होता है कि हम उस चीज़ को इधर भी आके लेके चलें और हम प्रोटेस्ट करें। हमारी पहली तरजीह होती है या होल्स प्लेस या एम्बेसी, लेकिन एम्बेसी इसलिए हमारी ज़रूरी होती है कि एम्बेसी में हमारा एक हक है कि एम्बेसी के आगे हम करें। वो एम्बेसी जो है सब की एक क्या नाम है, आप कह रहे हैं सब पाकिस्तानियों की है और हम भी पाकिस्तानी हैं, हम हमेशा एक पुरमन उधर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। हम एम्बेसी से लड़ने नहीं जाते, हम अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने जाते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने हमारी लीडरशिप की तो बात की है, हम जब प्रोटेस्ट कोई अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लीडरशिप है, हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह अमल में लाएं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई इधर छुपाऊँगा नहीं, ना मैं किसी से डरता हूँ, हमारे कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो एम्बेसडर साहब के पास बैठते हैं, एम्बेसडर साहब की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मैं ये भी कोई इसमें पीछे बात नहीं रखूँगा। जो ये एम्बेसडर साहब हैं, एम्बेसडर साहब का काम होता है कि पूरी कम्युनिटी की बातें सुने या प्रॉब्लम सुने, लेकिन एम्बेसडर साहब के पास जब भी हम एज अ पीटीआई या हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करने का हमें देखना तक पसंद नहीं करते। वो जब भी निजी महफलों में बैठते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, वो इस तरह हमें पेश करते हैं जैसे हम इधर दहशतगर्द हैं। हमने तो कभी जाके उधर एम्बेसी में जाके कोई लड़ाई नहीं की, उनको गालियाँ दी, हमने एक पुरअमन एहतजाज और रिकॉर्ड करते हैं कि आप हमारा ये एहतजाज पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे में कुछ बंदे हैं और आप भी जानते हैं, जो उधर नहीं आते वो इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, इनके पास इनके ताल्लुकात हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम जब भी प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं इनको हमेशा हम कॉल देते हैं, लेकिन वो ना आए फिर उनकी अपनी मर्जी।
1: अच्छा, कुछ लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हम वहाँ उनके साथ लड़ने तो नहीं जाते, लेकिन आप एहतजाज जब करते हैं, तो मुझे याद है 2014 में एक यहाँ पे तंजीम बनी थी पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम, और उसमें जितनी भी पाकिस्तानी जमातें थी, सियासी हों, समाजी हों, मसाजिद हों, वो सब उसमें शामिल थे। और उस वक्त जो इशू था वो ये था कि हमें रीडेबल पासपोर्ट जो है उसकी मशीन यहाँ कोपनहेगन में चाहिए ताकि हमें नॉर्वे जाके वहाँ से पासपोर्ट ना बनवाना पड़े। तब हम जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एहतजाज भी करते थे, हमें अच्छा भी लगता था, वो जमहूरी भी था, वो ठीक भी था, और यहाँ तक कि 14 अगस्त वाले दिन हमने वहाँ पे किए हैं। लेकिन आज जब पीटीआई वाले अपने हकूक के लिए वहाँ पे जाते हैं تو ان کو جو ہے وہ ملک دشمن بھی کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ غیر جمہوری بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے مہم چلانے اور پتہ نہیں روا کا جب ایک تو یہ ہم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی کو غدار، ملک دشمن، روا کا جنڈا ہمیں فضول میں جو ہے وہ لیبل لگاتے جاتے ہیں، تو اس میں اور آج کیا فرق ہے ان لوگوں میں جو پہلے سمجھتے تھے کہ یہ درست ہے پاکستان امبیسی میں جو ہے وہ جمہوری حق ہے کرنے کا، اور آج جو وہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر جمہوری ہے؟
2: سر یہ دیکھیں، جب بھی آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کبھی بھی غیر جمہوری نہیں ہوتا، ایک ڈیموکریٹک طریقہ، جب جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ایک چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو ادھر ایک آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کو سنا جاتا ہے، آگے تک لے کے جایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب دیکھیں ہم ادھر ساری آرگنائزیشن، ادھر ساری پاکستان کی، ہم پاکستانی ہیں اور کچھ بھی ہم کر لیں، ہم اپنا نام سے پاکستانی تو نہیں ہٹا سکتے، ڈینش پاسپورٹ لے لیں، لیکن جب آپ کی عقیدت اور آپ کا کوئی نظریہ ہو، جس طرح آپ پاکستان سے تو ہٹ نہیں سکتے، نظریہ بھی نہیں ہٹا سکتے، اور ہمارا جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جب آپ اس سسٹم میں پلے بڑے ہوں تو جب آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں جس طرح سسٹم اور جس طرح وہ پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے، تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ان ملک کی سرفرست میں آئے، اوپر ہمارا ملک ہو، اور جس طرح ہمارا جو منشور ہم نے اپنے لیڈر جو خان صاحب ہمیشہ پاکستان کو سب سے آگے رکھا ہے، تو اب اگر ہم اپنے رائٹس کے لیے اور ایک جو بے گناہ لیڈر کو اندر رکھا گیا ہے اور نہ عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے، نہ یہ جس طرح یہ ظلم کر کے ہمارے سیاسی جو لیڈرشپ ہے آدھے سے زیادہ وہ جیلوں میں رکھی ہوئی ہے بے گناہ، نہ کیس عدالت میں سنے جاتے ہیں، ہمارا تو یہی ایک احتجاج ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز ریکارڈ کرائیں اور آگے تک لے کے جائیں، یہ آگے تک لے کے جائیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا سوچتے ہیں۔
1: اچھا آدھے بھائی، میں اکثر جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ جس طرح ہم جب بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو دوسری پارٹیوں کے یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ہیں، تو جب میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایز اے پاکستانی پاکستان کی بات کرتا ہوں، اور اس میں پھر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتے تھے، تو اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی بات کرے گا وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں یا یورپ میں اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر آج نواز شریف یا پیپل پارٹی یا نون لیگ جو بھی ہے پاکستانی جماعت، اگر وہ پاکستان کو اوپر لے کے جانے کی بات کریں اور صحیح اقدام، صحیح جمہوری طریقے سے کام کریں، تو میرے خیال میں جو کہتے ہیں نا کہ یہ 90% جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا اوورسیز پاکستان دنیا بھر میں رہتے ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بات کریں۔ میں یہ اس بات کے سمجھنے کے کتنا درست ہوں؟
2: سر آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم نواز شریف کے خلاف ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں، جو بندہ ایک بات کرتا ہے، پہلے میں نے جب بتایا آپ کو کہ جب ہم اس معاشرے میں پلے بڑے ہیں، ہم نے یہ ایک سسٹم دیکھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ ہو، اور وہ جو سسٹم جو آپ نے دیکھا ہے، یہ نواز شریف زرداری 40-50 سال سے ہمارے ملکوں میں راج کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ کام پہ جاتا ہے صبح اور شام کو، اس کو یہ نہیں پتہ نہیں اسے دو وقت کی روٹی بھی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 40 سال سے ہمارا ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ہم جب بھی سوچتے ہیں آج ملک ٹھیک ہو جائے، کل 40 سال سے پیچھے دیکھیں، روز آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ملک اوپر جائے گا، لیکن 40 سال سے ہمارا ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے، تو جب ہاں صاحب ایک سسٹم لے کے آئے تھے، ایک منشور لے کے آئے تھے، وہ اس لیے اوورسیز پاکستانی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں وہ، اگر ہم وہ سسٹم چلا یا ہاں صاحب کی وجہ تھی، ہم بھی پاکستان بھی ان ملکوں کی سرفرست میں آ جائے گا، بات بس اتنی سی ہے، اگر وہی منشور نواز شریف زرداری لے آتے ہیں تو وہی چیز ہو جاتی ہے، جو بتے ان کی پارٹی کے جب ادھر آ کے 5-10 سال ایک دو سال رہتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئیں، لیکن ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے ملک میں اور ان ملکوں میں کیا فرق ہے، اگر کوئی ملک اپنے ملک کو ان ملکوں کے برابر لانا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کا سوچیں، پہلے اپنا ملک ہے، وطن ہے۔
1: اچھا میں ویسے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہ یہ ویسٹرن یعنی یورپین یونین اور امریکہ وغیرہ جو ہے یہ، اور نہ ہماری جو کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں وہ، اور جو خاص طور پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جرنلز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو، کیونکہ جب آپ کی پیٹ میں کھانا ہوتا ہے نا تو آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، उनके स्पोर्ट्स, उनके कोई कुछ और, या आप फिर सोचते हैं हम कहाँ घूमने जाएं पाकिस्तान में, अगर उससे ज़्यादा पैसे हो फिर दुनिया की कहाँ पे सैर करें। तो ये नहीं चाहते कि हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो, क्योंकि जब वो ख़त्म होगी तो हम सवाल उठाना शुरू करेंगे। हमने पाकिस्तान में देखा, जब ये 3 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, तो उसकी जो रिपोर्ट कॉमनवेल्थ और यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट लोग वहाँ पे जो गए थे ऑब्जर्वर इलेक्शन जिन्होंने देखा लूटते हुए, वो रिपोर्टें आज तक जो है वो मंजरे आम पे नहीं आई। तो ये लोग भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते, हमारे जो जनरल्स हैं, कि ये भूख निकले और आवाम जो है वो आगे का सोचना शुरू करें।
2: सर, काफ़ी इस सवाल में आपने जवाब भी दे दिए हैं, और बात सिर्फ इतनी सी है सर, थोड़ा सा ये क्या नाम है, रियलिटी है। इसमें आप देखें, खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया। पॉलिटिशियन तो हमारे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी इकदाम उठाए हैं, जर्नैल्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सर। अगर आप सियासतदान को पावर दे दें, उनको अपने मुल्क चलाने दें डेमोक्रेट तरीके से, तो कभी मुल्क मार नहीं खाएगा। लेकिन जब आप अपना पेट, सिर्फ अपने पेट का सोचेंगे, तो फिर तो, और दूसरी तरफ भूख रखेंगे, फिर खुद आप ही बादशाह करेंगे। और जब खान साहब आए थे तो काफ़ी बंदों को इनका ये इनका सिस्टम जाता हुआ दिखाई दे रहा था। 70 साल से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, खा रहे हैं, मुल्क तोड़ दिया आपने, फिर भी आपकी भूख नहीं ख़त्म हुई। अब कल को सिंध टूट जाएगा, बलूचिस्तान, जिस तरह ये इंटरनेशनल मीडिया और आपकी गलतियों से जिस तरह हमारा उधर भी एक हो रहा है, जुल्म आप कर रहे हैं, तो कल को वो भी, ये हमारा बांग्लादेश वाला नतीजा मुझे नज़र आ रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी सर, जब आवाम को शऊर आएगा तो आपकी दीवारें तो गिरेंगी, लेकिन ये नहीं पता आपको कि मुल्क तो ऊपर आएगा। ये सिर्फ अपना, आज आप तेल देख लें जो बाहर से आता है, आधे से स्मगली ये जर्नैल अपना रखते हैं उधर कमीशन, हर चीज़ पे इनका अपना कमीशन है। अगर आप कैंट देख रहे हैं, ठीक है जी, मैं तो आप पूरी उम्र हम पाकिस्तान बचपन में रहे हैं, खारियाँ कैंट में हम स्कूल जाते थे, ठीक है, जब हम खारियाँ कैंट में अंदर जाते थे इससे लगता हम यूरोप में आ गए हैं। खारियाँ कैंट से बाहर निकलते थे तो हम जाते कहते थे हम किसी, ये तीसरी दुनिया। तो आप ये फ़र्क देख रहे हैं, अपना इन्होंने सिस्टम उठाया हुआ और आवाम का ये सोच नहीं रहे।
1: अच्छा, आपकी पार्टी के जो एक इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बड़ा काम भी किया है, शहबाज़ गिल साहब अमेरिका रहते हैं, वहाँ से जो है वो वीलॉग्स करते हैं, और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि ये हमारे जो आर्मी है फौजी, उन्होंने जो है वो अपना जो बिजनेस शुरू किया हुआ है, उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट्स का जो है वो बायकॉट किया जाए। आप उसको कितना समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त इकदाम है कि जो पाकिस्तान के आर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो वो बिजनेस करते हैं और सब्सिडी भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो ठीक है बजाय इसके कि उनके प्रोडक्ट्स भी लिए जाएं?
2: सर, बात ये है कि अब मैं जैसे पहले भी कहा कि हर चीज़ पे इनका इख्तियार है, मुल्क ये चला रहे हैं, सियासतदान तो आगे डमी है। ये तो अगर सियासतदान की आप करप्शन करते हैं, वो तो 20% भी बंदी नहीं है जो ये कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स देखें हर चीज़ पे, अभी PIA भी इन्होंने ली है, बैकफुट पे यही है PIA पे। तो आप किस चीज़ का बायकॉट करेंगे भाईजान? मोहन तो उन्होंने चलाई हुई है, कुछ दिन चली भी थी, लेकिन जब उधर क्या नाम है हर चीज़ का बायकॉट करेंगे तो आप खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से? तो ये थोड़ा सा मुश्किल इकदाम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो अगर इस तरह का हो जाए तो बड़ी अच्छी एक मुहिम है सर।
1: अच्छा, वापस आते हैं, जो मेन है कि जो एहतजाज पाकिस्तान में हो रहा है, वो उसकी सुनने में आ रहा है कि अभी जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, धरने का जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और उसका कुछ प्लान भी दिया गया है। तो आपने जो है डेनमार्क में एक एम्बेसी के सामने 27 सितंबर की डेट दी थी, जिसको पोस्टपोन करके 4 अक्टूबर आज का दिन था रखा हुआ, आज वो एहतजाज हो रहा है या उसको पोस्टपोन कर दिया है?
2: सर, पहली बात तो ये, 27 का हमने जिस तरह पाकिस्तान की हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि 27 को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन कुछ टैक्टिकल सूरत हाल की वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया, और एक अच्छा फैसला था, ठीक है जी। और इन्होंने कंटेनर्स हर जगह लगाए हुए थे और इतना क्या नाम है मोटरवे तक तोड़ दिए थे, लेकिन हमारी पार्टी का ये एक टैक्टिकल अच्छा फैसला, इसको प्रोलॉन्ग करें, इनको पता लगे कि ये क्या कर रहे हैं, खुद अपने पैरों पर कलाड़ी मार रहे हैं। और दूसरी बात ये सर, हमारा रबता था हमारी क्यादत से, पाकिस्तान से, तो हमने भी इसलिए प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया कि जब पार्टी नया प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे तो हम उसी साथ एक तरफ चलेंगे। तो ये है कि आज 4 को जैसे कल मुज़ाकरात हुए हैं, तो आप कह रहे हैं जैसे मुज़ाकरात फेल हुए हैं, फेल तो होने थे सर, हमारी डिमांड थी और खान साहब को और सियासी कैदियों को रिहा करें। अगर खान साहब को रिहा नहीं करते, कम अज़ कम सियासी कैदियों को रिहा करें, और खान साहब को, खान साहब ये तो नहीं कह रहे मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करें सर, कम अज़ कम उनको एक राइट मिलना चाहिए इलाज कराने का। अपना क्या नाम है जो है वो विशाघर वापस कर रहे हैं, लेकिन और जो हमारे क्या नाम है उनकी बहनों को एक और फैमिली को पकड़ा हुआ है, वो एक दो डिमांड थी, इस तरह की छोटी मोटी डिमांड थी। और फिर मार ये था कि अगर आपने ये मुज़ाकरात में हमारी पहले खान साहब से मुलाकात कर दे सियासी, वो भी ये बात नहीं माने। और ये नून लीग तो ये क्या नाम है गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, ये तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। जिस तरह मोहसिन नकवी 4 दफ़ा तो उठे हैं उधर मीटिंग से मुसवदा लेके, बार बार वो फील्ड मार्शल के पास जाते हैं फिर उधर से चेंज करके लाते हैं। मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते, मुज़ाकरात टेबल पर बैठ के उसी वक्त होते हैं, पीछे से मशवरे लेके नहीं आते सर।
1: वो एक मजाक भी होता है ना, मुज़ाकरात
2: साक ये बात सही है, ये मजाक ही है सर,
1: ये मजाक है
2: जी।
1: और देखें पहले तो था इमरान खान साहब को जो है वो नाजायज़ जेल में डाला हुआ है और उन पे जो नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं और सज़ाएं दी हुई हैं उनकी तो कोई बुनियाद नहीं, उनकी तहरीक के लिए निकले थे। और आज आप जो है जो PTI है वो उनकी दवा दारू के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या ये दवा दारू एक इंसानी हकूक नहीं है?
2: सर बिल्कुल इंसानी हकूक है सर, देखें उनको जो आँख का इन्फेक्शन हुआ है वो 15% उनकी एक आँख की देखने की ताकत रह गई थी, तो ये तो एक हर कैदी का राइट है, जो भी एक सियासतदान हो ना हो जो आम कैदी है उसको इलाज की एक देनी चाहिए। और फिर भी ये खान साहब हैं जो सर एक नामवर शख्सियत और जैसी उनकी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में भी नहीं है जो हमारे यहाँ, तो उनको भी ये इजाज़त ना दें तो ये तो एक जुल्म है सर। तो ये हमारे थोड़े छोटे मोटे ये क्या नाम है पार्टी के जो थे कि कम अज़ कम इलाज तो दें, और ये अदालत ने फैसला भी किया था, उसके अदालत का भी देखें सर एक फैसले का एहतराम भी नहीं किया गया।
1: अच्छा आतिफ साहब, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ रोडें तो बंद हैं, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, हुकूमत तो खुद ही उसमें फंसी हुई है और आधी नाकामी तो उनको वैसे हो चुकी है। PTI जो है, जिस तरह आपने कहा कि अच्छा इकदाम था कि ये 10 दिन जो है वो इंतज़ार करें, तो क्या ये अच्छा और ना होगा कि अगर वो ऐलान कर देते हैं कि जी हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके नहीं जा रहे, हम जो है मीनार पाकिस्तान लाहौर जाएंगे, फिर जब उधर वो कंटेनर्स मूव करें तो कह देंगे जी हम अब जो है वो कराची में मज़ार कायद पर जो है वहाँ पर जाएंगे, तो इनको भी जो है जिस तरह उन्होंने इनको पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, अब ये थोड़ा सा ट्रक की बत्ती पे उनको लगाएं
2: जी सर। इस तरह के फैसले आप आएंगे, आप देखें आगे आगे होता क्या सर, इस तरह ये जो इस तरह तो नहीं आप चल सकता, ये जो काम है ये अपना पैरों पे खुद कलाड़ी मार रहे हैं, मुल्क पूरा सर सिस्टम, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से, खुद इन्होंने सर मुल्क तबाह किया हुआ है, अपने मफादात के लिए बैठे हुए हैं। कब तक ये सिस्टम चलेगा सर, गरीब बंदे का कुछ हाल नहीं है, खाने के पैसे नहीं है बच्चों के पास, गरीब को तो छोड़ें जो हमारे मिडिल क्लास हैं बेचारे, वो भी उनका भी कोई हाल नहीं सर, जो मीर है वो मीर से मीर होता जा रहा है, जो अगर इनकी वो क्या नाम है कहते हैं इनके साथ कनेक्शन बनाने में चले हुए हैं, गरीब मीर तो गरीब का सोचता ही नहीं है जाना आप उधर।
1: आदफ साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का और सवालों के जवाब देने का। आखिरी सवाल के अगले एहतजाज की डेट जो है वो आप कब और कैसे अनाउंस करेंगे?
2: सर अब इंशाल्लाह आज देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, तो फिर हम भी एक फ़ैसला लेंगे। और हमने तो पाकिस्तान में क्या तो कि ये भी मशवरा दिया कि अपने मसला ये है सर कि पहले मशवरा तो ये दिया कि हर शहर से हर गांव से अपने बंदे निकालें रोडों पे, कोई आगे मार्च लेके जाता है कि नहीं जाता, लेकिन कम अज़ कम अपनी अपनी यूनियंस के अपने अपने शहरों के बंदे रोडों पर आ जाएँ तो वही बड़ा बनता है। लेकिन बात यह है कि सर आधे से ज़्यादा जो हमारे लीडर हैं, नौजवान हैं, यूनियंस के लीडर हैं, वो भी जेलों में बैठे हुए हैं, आप सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा बंदे जो हैं हमारे लीडर हमारे सियासी कैदी हैं। हमारी तो यही डिमांड थी इन मुज़ाकरात में कि उनको रिहा करें, तो ये 3-4 शराइत थी जो इन्होंने मानी नहीं है, तो एक मानते थे दूसरी कहते थे नहीं माननी, तो अब देखें आगे होता क्या है, जो डेवलपमेंट होगी हम उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह अपना स्टेप भी उठाएंगे। लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ PTI की क़यादत माशाल्लाह बहुत इंगेज है और लड़के बहुत काम कर रहे हैं, अगर इधर से प्रेशर भी ना हो तो हमारी जो PTI के कुछ साथी कंप्रोमाइज्ड हैं वो भी आप जो हैं क्या नाम है साथ उठेंगे, तो यही है सर।
1: आखिर में आप कोई पाकिस्तानी कम्यूनिटी को डेनमार्क में या जो यहाँ जहाँ तक हमारी दुनिया में आवाज़ जा रही है वहाँ तक आप कोई अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हो?
2: सर हमारी आवाज़ ये है एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी हम कोई प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं आप आएँ। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, खान साहब के लिए कर रहे हैं। आप एक अभी अगर आप नहीं निकलेंगे, आप अपना आप इस वक्त निकलेंगे फिर बहुत देर हो जाएगी, अभी भी बहुत देर हो गई है, प्लीज़ निकला करें। हम एहतजाज की कॉल देते हैं, खान साहब की ज़िंदगी का सवाल है, पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। तो यही है कि अभी नहीं तो फिर कब, क्योंकि ये अपने राइट्स के लिए निकलना पड़ता है, जब आप निकलेंगे तो फिर आगे सुनी जाती है।
1: बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो आपसे बात होगी।
2: थैंक यू
1: अपना
2: सर,
1: बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप
1: जी। समीन और नाजरीन, ये था बिस्मिल्लाह कराम प्रोग्राम, जिसमें हमारे मेहमान थे जनाब आतिफ इलियास साहब, पीटीआई से तलक है, सबका सदर भी रह चुके हैं। तो सामीन और नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और 12 बजे जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी बाशी के संग प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 309। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं मुजाकरात से। जी हां, मुजाकरात फेल हो गए। आपको नसीम हजाजी की वो किताब याद होगी, और तलवार टूट गई। जी हां, यहां पर भी मुजाकरात टूट गए और लॉन्ग मार्च जो है वो अब से चंद ही घंटों के बाद शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले वजीरस्तान से लोग निकलेंगे और लकी मरवत पहुंचेंगे। लकी मरवत में उनका इस्तकबाल करेंगे सुहेल खान अफरीदी, और वहां से फिर जो लॉन्ग मार्च है वो रवान दवा होगा। आज आपके सामने पूरा शेड्यूल रखेंगे कि कहां कहां से पहुंचते हुए फिर वो सवाबी और उससे आगे इस्लामाबाद की तरफ का रुख लेगा। अब सबसे पहले आपको जो मुज़ाकरात कहां पर टूटे हैं वो बताएंगे, आखिरी हतमी बातचीत क्या हुई, फिर जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, पूरी शाम का और दिन का अहवाल बताएंगे कि असल में होता क्या रहा, किस वजह से मुज़ाकरात टूटे। क्योंकि नून लीग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की ऑफर दे दी इमरान खान को, एक काम जो वो हर बार करते हैं जब भी उनसे कोई मिलने जाता है, और उससे आसिम मुनीर साहब को बहुत तकलीफ है। नून लीग ने ऑफर कर दी कि वो काम इमरान खान आसिम मुनीर के साथ ना करें, हमारे साथ कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात बन ना पड़ी। बड़ी कुर्बानी थी नून लीग ने ये दी, छोटी नहीं। राणा सनाउल्ला ने तो कहा कि मेरे साथ कर लें ये काम खसूसी तौर पर, लेकिन फिर भी कोई बात बन ना पड़ी। वो सब कुछ क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले एक गुजारिश कि आज शायद आपको आवाज सुनने में कुछ मसला हो, क्योंकि हमारे माइक्रोफोन में आज कुछ मसला है। ये इसी व्लॉग के लिए होगा, अगले के लिए इसे फिक्स कर लेंगे। मैं इस वक्त सफर कर रहा हूं जिस वजह से आपके लिए ये परेशानी होगी, जिसके लिए पेशगी माजरत। अब आते हैं सबसे आखिर पर सूरत हाल क्या है। आखिर पर सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों ने यह ऐलान कर दिया कि मुजाकरात नाकाम हो गए हैं, और ना ही हुकूमत ने अपोजिशन की डिमांड्स मानी और ना ही अपोजिशन ने हुकूमत की डिमांड्स मानी, और जो लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है। लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे? आखिर की खबर आपको पहले दे दें कि जो असदुल्ला हैं वो ये कहते हैं, असदुल्ला जर्नलिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि हुकूमत ने 2 नंबरी की, एक ड्राफ्ट पर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक होने के बाद उस ड्राफ्ट को ऐवान सदर ले जाया गया। जब वो ड्राफ्ट वहां से वापस आया तो वो ड्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ हुआ था। मतलब ऐवान सदर में जाहिर है वही बैठे होंगे ना जिन्होंने 9 मई की फुटेज चोरी की थी, मतलब पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स या उनके नुमाइंदे। तो उन्होंने, उनका तो पुराना काम है झूठ बोलना, मुआहदों को आगे पीछे करना, फ्रॉड करना, धोखा करना, तो उन्होंने वही किया कि जिस मुआहदे के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के जो मुजाकरात करने वाले लोग थे वो अग्री किए, वो मुसवदा सदर हाउस गया। असदुल्ला के मुताबिक उस मुसवदे को वहां बदल दिया गया। जब मुसवदा वापस आया तो अपोजिशन ने कहा कि ये वो मुसवदा नहीं है जिस पर हमने अग्री किया था। तमाम चीजें तब्दील कर दी गई। याद कीजिए कल ही मैंने आपको तस्वीर दिखाकर ये कहा था कि अगर इस टीम को देखें मुजाकरात की जो हुकूमत की तरफ से है, तो ये वही टीम है जिसने आजाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ भी मुजाकरात किए थे। याद कीजिए कि वहां पर क्या हुआ था। मुजाकरात में से कोई चीज भी बाद में पूरी नहीं की गई थी। वजह क्या है? मुजाकरात करने वाले बेचारे कोई और है, पीछे असल जो फनकार है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स हैं। ये जो भी मुजाकरात कर लें, ये मुजाकरात में याद रखिएगा कि सालसी वो करता है, हमेशा ऐसी अदालत सालसी कर सकती है जिसका आपके ऊपर कोई इख्तियार हो, जो आपको सजा दे सके, जजा दे सके। ये तो बेचारे सारे उनके अपने, मतलब आप ये कह लीजिए कि टाउट्स हैं मिलिट्री जर्नल्स के, जिनको बिठाया हुआ है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये सारे फॉर्म 47 पर यहां पर बैठे हुए हैं कुर्सी की मेज की दूसरी तरफ, तो इन्होंने मिलिट्री जर्नल्स के ऊपर क्या दबाव डाल लेना है? तो इन्होंने क्या मुजाकरात करने हैं, इनकी सालसी किस चीज की? यही वजह है कि इस कॉम में कोई और क्लियर हो या